0: ऐसे बात ला, ताजिक से यूं रोया लो या क्यों तेज़ में बने तो तंदे तीरिंग तंदे आ हा को बा अंकाशिं ये बे तिंडे जी क्यूरिम जी क्यू ओर बा ताजिक केरांग के तंदे शे साब से बे क्यूरिम नालो ले या शे साब तिंड से की केजू रची आ कंडे जी ले या चुगू ना
1: लसे ता तिंडे से रचा ला सोसो के सुयूरिंग ने रिंधान दा में बे शबे चला तो ये की रिंधान हा को बने चेजी ता तिंग सा शे घर सुने ले ता शे दी नंबर दी सुयूरिंग सुयूरिंग या रहा रचा ये तब शे युगो दांजे सुयूरिंग रोयां दी कंट्रेस शे दी नलो लोग तो मंजू सुयूरिंग रोयां दी नंबर कंट्रेस थोंडे मिशन बेल पा न्याम जो चोग तो ओ दी रचा दी सोंजा मंजू थालो रारे थालो रांग मंजू तंदा कबरानी दी चुआ ला कलो मंजू की कलो कलो की शब्दो रांसो